0: कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि 19 साल बाद भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता, कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनिंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था, और इसका हमको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
3: I think it's definitely huge for France, definitely huge. Felt all the support about the fans. We also got all the support from all the staff behind. And I think definitely today was a day for French badminton and it was a day for the whole staff also. I mean, I

0: didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
1: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
2: There are a lot of people is supporting me. I want to thank all of my fans supporting me. This keeps me going and just giving me energy. So I'm so excited and very enjoy. I think it's support me. Yeah, cheering on me. This is my motivation. And I, there are a lot of people, my team coach, head coach, my family, all fans, trainer, all supporting me. This is my keep going.
1: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
3: And now, our men's doubles world champion 2026 from China, Liang Weiqing and Wang Cheng.
1: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात दी और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
4: 31년 만에 금메달을 따게 돼서 너무 기분 좋고 영광인 것 같아요. 네, 이번 오늘 결승전에서도 그렇고 시합한 내내 정말 좀 대단한 열기를 보여주셔가지고 정말 감사하게 생각하고 선수로서는 정말 뛸 맛이 났던 것 같아요.
5: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor.
1: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेलरू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
6: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, we no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
1: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
7: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
1: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी। विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ 2 देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत। इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
8: बीइंग इनटू दैट क्लब आई फील लाइक सो हैप्पी। देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी वी हैव इन फ्यूचर। आई फील लाइक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। वी जस्ट नीड्स टू टेक दिस एज अ पॉजिटिव एंड इन अ कॉन्फिडेंस वे। आई फील लाइक दिस ऑल मोमेंट्स एंड गेटिंग दिस मेडल एंड इवन दैट अर्जुन अवार्ड दिस वीक व्हेन दे अनाउंस्ड, आई फील लाइक दैट आल्सो गिव अस सम अदर बूस्ट इन दिस टूर्नामेंट।
1: इसी श्रेणी में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया। राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली।
9: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो, लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एटलीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम

0: on court we were nervous, but then when we started playing, we came into the momentum, we forgot everything and we were there.
1: Men singles में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए।
2: Playing world number one is never easy. It's a first round for me as well. I would say even I have not settled in, but I think it was a tough one for both of us and there were no big moments as I said, but yeah, happy to pull it off.
1: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली।
2: Definitely a lot to learn, especially this match, a tough one to digest as well, but we'll go back, analyze and yeah, I think a lot of positives as well from this tournament, but I think definitely a lot to learn and a long way to go.
1: दूसरी तरफ लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 32 में यूएसए के गैरेट टैन से हारे, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। वुमन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी।
0: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से. बहुत अच्छा चल रहा था. Game one, game two, or game three भी बहुत equal चल रहा था. The last three points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
1: Men's doubles में MR Arjun और Hariharan Amsa Karunan की जोड़ी round of 32 के आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी।
3: वी प्लेड डिसेंट, आई वुडंट से वी प्लेड बैड, बट जहां पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि दे वर प्लेइंग क्वाइट अ सॉलिड गेम, अ लॉट ऑफ द पॉइंट्स हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
1: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विक गाड़े एवं आसत सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया। कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले। और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
4: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस। आई वुडन्ट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीज थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
1: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे, जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहनें माइशा और ताबिया।
5: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूएई में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूएई में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले यूएई को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
1: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
6: I'm from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there. And I've been playing for a year and a half now, representing UAE.
1: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने United States of America का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
7: So I'm from Alwar, Rajasthan, and I was born here. So I'm still an Indian passport. Yeah, I frequently come here. All my family's here. There's a lot of Indians in our academy, and
1: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2006

2020 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें नंबर्स पर फोन कर सकते हैं 2331-4444. दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने और हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और सबसे पहले नजर आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional groups of countries, and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट आई. सेंसेक्स में लगभग 200 अंक की सुस्ती देखी गई, जबकि निफ्टी 24,219 अंक पर बंद हुआ. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 8 से 9 अतिरिक्त देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए प्रयास कर रहा है और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.22% यानी 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.14% यानी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। मिड कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके। दोपहर के सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बढ़ने से दोनों सूचकांक नकारात्मक दायरे में चले गए और दिन भर बाजार दबाव में बने रहे।
1: So benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. The Sensex declined 172 points or 0.22% to close at 77,369. The Nifty dropped 33 points or 0.14% to settle at 24,219. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange showed mixed trend. The mid-cap 100 index added 0.1%, while the small-cap 100 index dipped 0.3%. Earlier, markets opened marginally up but failed to sustain their early gains. Both benchmark indices slipped into negative territory around the afternoon session as selling pressure intensified. The markets remained under pressure for the rest of the day.
0: सेंसेक्स सूचकांक की 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.3% की गिरावट देखी गई। वहीं बजाज फिनसर्व में 1.2% और ट्रेंड में 0.9% की सुस्ती आई। इसके विपरीत टाटा स्टील में 1.9%, HCL टेक में 1.3% और इन्फोसिस में 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of 28 sectors registered losses. Among the top underperformers, insurance decreased 0.9%, PSU banks as well as housing finance shed 0.8%, and consumer durables fell 0.4%. In contrast, metal advanced 1.4%, telecommunications rose 1%, and commodities added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,467 companies declined, 1,973 advanced, and 248 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ। शिशिर, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कारोबार का इस सप्ताह का पहला दिन रहा और गिरावट के साथ इसकी हमने देखी, जो बंद जब बाजार बंद हुआ गिरावट के साथ बंद हुआ, और पिछला सप्ताह भी जो था मिला जुला कारोबार हमने देखा था, उसमें क्या कहेंगे इस पर आप?
2: देखिए, बाजार को एक कहते हैं ना स्पष्ट दिशा की जरूरत है, और स्पष्ट दिशा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि आज अचानक पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। अब अभी हम लोग बात करें हॉर्मुज की, बात करें, अब वहां पर कहा गया है कि जो भी जहाज गुजरेंगे उनको एक शुल्क अदा करनी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है कि वो जो है वो सैंक्शन प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो बाजार के अनुकूल नहीं है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि बाजार आज, आप देखिए, आपने जैसा शुरू में कहा कि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको वो बनाए नहीं रख सका क्योंकि परिस्थितियां और जो कहते हैं ना कि संकेत जो थे वो बहुत पक्ष में नहीं थे। इन्हीं सब का नतीजा ये रहा कि आज बाजार में हमें जो है गिरावट, हालांकि गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं है, मामूली गिरावट है। एक महत्वपूर्ण जो आज तथ्य मुझे लगा कि है वो है आपका तकनीकी जो आईटी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें हमने आज तेजी देखी। जो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा माहौल बन रहा है कि आईटी कंपनियां जो हैं वो पिछड़ रही हैं, एआई के मामले में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी आती है, थोड़ी सी भी बेहतरी स्थिति देखने को मिलती है तो उसका हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जहां तक सवाल है वित्तीय सेवाओं की बात हम लोग करें, चाहे सरकारी बैंकों की बात करें या निजी बैंकों की बात करें, NBFCs की बात करें, वहां पर जो हमने गिरावट देखी है, अब वहां पर एक ये भी चिंता जो है वो सताने लगी कि हमारा इंटरेस्ट मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ने की तो बात है, लेकिन फिलहाल जो पहली और दूसरी तिमाही जो है वहां पर हमारे ब्याज के ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी। लेकिन आज का जो पॉजिटिव मैं पॉइंट कहूंगा वो है आईटी कंपनियों में बढ़त।

0: US trade deal as of now being again in that territory, that zone? How do you see this?
1: See, I believe that the FTA with Australia, and if you talk about FTA with EU, then we talk about Britain, which Australia and UK have already been operationalized, and some of the Gulf countries we have seen the FTA have been operationalized. Now India is looking to expand those market where we have some kind of strong footing. Like if you talk about Japan, the kind of relationship which we have, the kind of cordial relationship with Japan and India, that is also giving some kind of scope for further enhancing the cooperation in terms of the trade and investment. So we have to look for market which are already there, but we have to go deep into that market. At the same time, we also have to look for the newer market, whether we talk about the Latin America, whether we talk about African countries, where we talk about some of the Asian economies also, where we have not so good business relationship, there can we expand into that. So that is why the focus, number one, going deep into wherever we have good relationship, at the same time looking for the newer market. And since we are talking about Viksit Bharat by 2047, we have to attract more and more investment. So these are the issues why we are seeing that the minister is going there. And please remember, the finance minister is also going to travel to Canada and US, and there she is going to talk about investment as well as the trade.
2: Right. And the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal as well said that India will amend the existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country. Speaking during a program in Tokyo, Mr. Goyal said that within the next 2 months, India will amend its regulations. The minister said the government was willing to address issues faced by investors where the demands were fair and justified.
3: श्रोता मार्केट मंत्र कार्यक्रम में शेयर बाजार से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और नंबर है 2331444 2331 0481 और तीसरा नंबर है 2371 7106 इन नंबर से पहले 011 लगाना आप ना भूलें और आगे बढ़ते हैं खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों को और सशक्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों की तैयारियों पर चर्चा की गई डॉक्टर जयशंकर ने भारत रूस की मजबूत और बढ़ती साझेदारी विशेष रूप से आर्थिक सहयोग व्यापार तथा ऊर्जा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि व्यापार ऊर्जा और परमाणु सहयोग सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है शशि जी विदेश मंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या मायने हैं इन तमाम बातों के
1: देखिए प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक होनी है उसके लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए इसके अलावा जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जो आपने एक पैराग्राफ में पढ़ा कि उन्होंने ज्यादा खाद की बात की उर्वरक देने की बात की है देखिए जब से रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई हुई उससे हमारे यूरिया की आपूर्ति के ऊपर और बाकी भी जो कंपोनेंट है उसकी आपूर्ति पर असर पड़ा और उसका असर ये हुआ कि उसके दाम काफी बढ़े उसके दाम बढ़ने का नुकसान ये हुआ कि हमारा जो सब्सिडी पे खर्च है वो काफी बढ़ा है और कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि जो 3,300 या 3,200 रुपए का जो पड़ रहा है उसे हम 250-300 रुपए या 350 रुपए में बेच रहे हैं मतलब 10वें हिस्से में हम उसको बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सब्सिडी का बोझ भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में रूस का ये कहना कि वो ज्यादा उर्वरक की आपूर्ति के लिए तैयार है वो काफी महत्वपूर्ण बनता है कई क्षेत्रों में उन्होंने हमारे साथ रणनीतिक साझेदारी की है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री और उनकी मुलाकात के पहले का एक आधार तैयार हो रहा है उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहां पर कुछ नए समझौते देखने को मिलेंगे
3: और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर हैं शंकर भोपाल से आपका स्वागत है सवाल पूछिए शंकर सवाल पूछिए आपका
4: मेरी आवाज आ रही
3: जी बिल्कुल आ रही है सवाल पूछिए
4: मेरा सवाल सर ये जो हमारे यहाँ चाइना से और मोस्टली चाइना से जो सामान आता है फिनिश्ड गुड्स कच्चा सामान नहीं फिनिश्ड गुड्स और उसको पे ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा दी जाती जिससे

0: हमारे देश में सामान बने और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और इसी इसी सिलसिले में अगर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के इंपोर्ट में कुछ रियायत दे दी जाए या जीरो ड्यूटी कर दी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी अपने आप, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे भी इंडिया में ड्यूटी है और कच्चे फिनिश्ड गुड्स पे तैयार सामान पे चाइना से ड्यूटी उतनी है जितनी समझ लीजिए दूसरे देशों से जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उनसे। तो ऐसा क्यों, उन पर ड्यूटी बढ़ा दें तो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कम हो जाएंगे चाइना से और यहाँ बनने की तैयारी हो जाएगी।
1: शंकर जी, आपका सुझाव तो अच्छा है लेकिन इसकी एक कुछ कहते हैं ना व्यावहारिक भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप किसी भी सामान पर जब शुल्क बढ़ाते हैं तो उसमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि उस देश के साथ जो भी आपका व्यापार है वो कितना हद तक प्रभावित होता है। तो जो भी आप कहते हैं कि आप वहां से आयात कर रहे हैं उसको आप,
2: जो लड़ाई का माहौल चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको ऐसे कंसीडर करते हुए तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या निफ्टी वगैरह कुछ बढ़ेगा? या आपने जो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, इसके ऊपर बताइएगा कि कौन सा सेक्टर सही रहेगा?
1: सतपाल जी, देखिए दोनों देशों के बीच जिस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति बने हुई है उसमें किसी भी तरीके की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हर रोज एक नई परिस्थिति हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज ईरान ने कहा कि वो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है वहां से जो भी जहाज जाएंगे उनसे वो पैसा लेंगे, तो ये एक अलग अलग तरीके की परिस्थिति है। अब प्रश्न यह है कि बाजार को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बीते कुछ समय से हमने शेयर बाजार में थोड़ी एक बेहतरी देखी है। अब शेयर बाजार काफी हद तक लड़ाई की बातों को जो है वो हम ये नहीं करें पूरी तरह से उसने डिस्काउंट कर दिया, दरकिनार कर दिया, अभी भी कुछ चीजों को, और मेरी हमेशा से राय रही है कि इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप बाजार में आना चाहते हैं तो छोटे छोटे किस्तों में आप लार्ज कैप में आप पैसा लगाएं, और वो भी जब बाजार में एक गिरावट का माहौल बना हो वहां पर आप खरीदें छोटे छोटे किस्तों में जब जब गिरावट आए। इससे आपको क्या होगा कि आपकी लागत में एवरेजिंग का मौका मिलेगा और आपके लिए कुल लागत जो है वो कम हो सकेगा। तो मेरा सुझाव ये है लार्ज कैप है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करें जो डाइवर्सिफाइड फंड हो और डेट और इक्विटी दोनों का हो, बैलेंस फंड जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहां पर आपके लिए बेहतर विकल्प होगा।
3: नेक्स्ट कॉलर इज के शुक्ला फ्रॉम महाराष्ट्र। मिस्टर शुक्ला
4: जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ
3: यू।
4: मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले साल महंगाई लगभग 7% था, इस बार दो तीन महीने में लगभग 10-12% बढ़ गया, क्या इसका फुल पूरा कारण ये जो पेट्रोलियम का प्रॉब्लम है दूसरे कंट्री से आता है उसका, या फिर और कोई कारण है?
1: शुक्ला साहब, थोड़ा सा मैं क्षमा के साथ आपके आंकड़े को थोड़ा सही करना चाहूंगा कि खुदरा महंगाई दर जो है, अगर जो ताजा आंकड़े जो कि जुलाई के हैं वो 4.5 के करीब में है, तो ये जो 10% की आपने बात कही है वो उचित नहीं है यहाँ पर उसको जिक्र करना। तो ये जो 4.5% है इसमें दो तीन चीजों की महंगाई दर ज्यादा है, आप प्याज की बात कर लीजिए, चीनी की बात कर लीजिए, इसके अलावा हम सोने और चांदी की बात कर लें, और हमारे आपके घरों में जो लहसुन और अदरक का जो इस्तेमाल होता है इसकी महंगाई दर काफी बढ़ गई है, तो हमारी थाली के बजट पर जरूर इसका असर पड़ा है। लेकिन कुल महंगाई दर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% के करीब में है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो दाम बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के उसका असर जो है वो कुछ हद तक हमें जरूर देखने को मिला है, क्योंकि डीजल का जब हम कहते हैं कि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे सामान की आवाजाही की लागत बढ़ती है और उससे महंगाई दर पर असर पड़ता है। लेकिन अभी भी जो 6% हमारे लिए महंगाई दर की सीमा होती है जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में जो एक समझौता है वहां पर हम नहीं पहुंचे, 4% से ज्यादा है तो वहां पर जरूर हमें सोचने की जरूरत होती है।
3: नेक्स्ट कॉलर इज सदबुद्धि फ्रॉम चेन्नई, वेलकम।
5: या हेलो सर, गुड इवनिंग टीम, मार्केट मंत्रा टीम,
3: गुड इवनिंग।
5: दिस इज रिगार्डिंग दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रिसेंटली वी हैव इंप्लीमेंटेड इन गुजरात, what time it will take the effect and when we are going to lead in the semiconductor chips preparation, sir?
1: Sir, I think by 27, by the next year, we will be in a position to export also after meeting the domestic requirement. And there are other plants also which are coming into existence. 2 or 3 have already started production. So I believe by 27 and by 20.

0: 2028, we will be in a better position in terms of the semiconductor, or what you can call it as a chips.
1: Moving on, Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson, Ebrahim Rezai, stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to Strait broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. On the other hand, United States Treasury Secretary Scott Bessent is set to unveil a new package of sanctions against Iran tonight. And in the oil sector, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.6% down at $92.87 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 2.3% lower at $85.08 per barrel when reports last came in. Shishirji, Iran as well, kind of throwing tantrums every day. Today something, tomorrow something, day after something. Now this new fees coming into picture. We'll come to that, but in the meanwhile, we are joined in by our next caller, Sainath from Thane. Mr. Sainath.
2: Hello.
1: Yeah, Mr. Sainath.
2: My question is that the company jo dividend, DTI share dividend, wo 15H form senior citizen ko valid hai ki form number 121 kuch change ho gaya.
0: ये चेंज हो गया है क्योंकि आयकर कानून 2025 लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 से, तो उसके तहत आपको जो फॉर्म है, देखिए फॉर्म वही है, बस फर्क ये है कि अब वो एक नई संख्या के साथ है. तो जो आपने 120-121 की बात की, ऐसा ही कुछ संख्या है जो आपको भरना होगा. और जो आपको डिविडेंड है, उस समय में आपके पास एक चिट्ठी भी आएगी कंपनी की तरफ से कि अगर आप उसके आपकी आय जो है वो कर की सीमा से कम है तो आप वो फॉर्म भर दीजिए, आपके डिविडेंड पर टैक्स नहीं.
1: Yeah, Shishirji, continuing with our earlier discussions, now Iran kind of trying to levy new fees from any country the vessels of any country which is transiting the Strait of Hormuz. Now, this is something which is of some concern, and also the state broadcaster says that approval of Article 3 strategic action is to ensure the security and progress of Strait of Hormuz plan. Now, this is something of some concern, and again we'll come to that. But we have been joined in by our new caller Kaushik from Kolkata. Kaushik.
3: सवाल और एक बार बोलिए
0: जी. सवाल पूछिए कौशिक जी.
3: हेलो.
0: हाँ कौशिक जी, सवाल पूछिए.
3: अच्छा सर, मेरा दो सवाल है
0: जी.
3: एक है जो इन्फ्लेशन 4.5 का जो परसेंटेज है, इसमें कौन से जो बारीकियां है इसमें देखी जाती है? क्योंकि एडुकेशन और जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज का इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा है, एक तो ये. दूसरा सवाल ये है कि आज ब्रेंट क्रूड का प्राइस फॉल किया है, फिर भी निफ्टी फॉल किया है, तो इसमें क्या इंटरलिंकिंग है ये समझ में नहीं आया आज.
0: कौशिक जी, पहला सवाल जो आपने महंगाई दर को लेकर के कहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका महंगाई दर को लेकर के है, वहां पर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के, उसके अलावा जो ताजा आंकड़े हैं उसमें प्याज की भी एक भूमिका रही है, जिसकी कीमतों में हमने बढ़त देखी, लगभग 22% वहां महंगाई दर है, जबकि चांदी की महंगाई दर 100% के ऊपर है. आपने जो जिक्र किया शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, वहां पर महंगाई दर है लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा तनाव या चिंता लें. दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा निफ्टी बनाम कच्चे तेल को लेकर के, इसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है. ये परिस्थितियां अलग थी जिसकी वजह से निफ्टी में आपने गिरावट देखी.
4: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 1% के उछाल के साथ 1,62,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.5% नीचे आकर 2,45,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शशि जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
1: थैंक यू शशि जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन.

0: करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद। थैंक यू शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional group of countries, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
0: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
3: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
4: நெகிலே எஃப்எம் குள்ளிலி பொது கேட்கலாம். திரைக்கானம் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் திரைப்படத்துக்காக டி எம் சௌந்தரராஜன் பாடிய பாடலை கேட்கலாம்.

0: இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं.
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है. मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं. दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं.
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट.
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की. उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा. जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं.
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है. आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है. जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है. ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है.
2: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके. भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है. गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे. वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे. श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई. रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040

तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேர்களை துறை இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியினை கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं.
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है. मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं. दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं.
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट.
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की. उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा. जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं.
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है. आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है. जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है. ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है.
4: With a large domestic market.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे. वे कल चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचे थे. श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई. रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा. नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है. भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है. उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई. एम्स्टलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है. भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्ले ऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी. और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की. जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में

0: இன்றிரவு ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी

0: उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation

0: கேட்ட நிகழ்ச்சியை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है. सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे. वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे. श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कैनेडा और अमरीका के

0: आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: We are a young country.
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे करेगा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit. Then welcome.

0: நேர்களே, இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ரஷித் கான் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். ஆனந்த் கோபால் பானர்ஜி அவர்கள் தப்லா. சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरे, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे कर रहा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
1: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
5: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled.

0: பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை மேல்சானான்குப்பம் எம்ஜிஎம் சரவணன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். வேலூர் பிஎம்எஸ் கதிர்வேல் அவர்கள் தவில். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है. सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे. वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे. श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी. इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है. वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानिया के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी. इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एश्विले और न्यूयॉर्क जाएंगी. यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को सम्पन्न होगी. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई. डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं. राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की. उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा. जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं. अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. अमेरिका

0: वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को खोलना है। उन्होंने दूसरे देशों को भी चेतावनी देते हुए ईरान के साथ आर्थिक संबंध सीमित रखने को कहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमरीका की चेतावनी को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने की स्थिति में नहीं है। श्री गालिबाफ ने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी अमरीकी बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए नई प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में खेलो भारत अभियान पर भी चर्चा की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। यूपीआई अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माही और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Himakshi Pawar. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security, including response to counter-terrorism challenges, fusion analysis and operationalization of intelligence through the multi-agency center, a vision document on narcotics control, detection and deportation of illegal migrants, a policy framework to combat cybercrime and proxy warfare by Pakistan. On the second day today, the conference will focus on the threat landscape from sub-aerial systems and formulating countermeasures, securing the blue economy, information warfare and its implications on national security and the need for a biosecurity framework. Pursuant to the directions of Prime Minister Narendra Modi, the conference is being held every year in a hybrid format since 2021 with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of cutting-edge officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience.